कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, हर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे हम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

की तस्वीरें बन जाऊंगी। मन में बात है, दिल में की बात है, तू क्यों उदास है।

मीठी प्यारी अगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ू मैं छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ू मैं छुपाए।

जेब जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम परी। जेब जिस दिन भी खाली हुई, जान रह जाए।

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
2: आज राम जन्म की बधाई है बधाई है। आज राम जन्म की बधाई।

0: जाओ रे जाओ रे रुक जाओ रे ओ मुझे बाल माँ अब न सताओ रे
1: आओ रे आओ रे आओ आओ रे।

तुम आज पिछित हो जाओ मेरे मुर्दान माँ भगवत सावरे आओ मेरे मुर्दान माँ भगवत सावरे।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा परस जा।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा परस जा।

मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मे